ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई 2026, सुबह के 5:53 और

ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 12:10 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व

उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगे।

कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया

0: चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of

तो क्या किया जाए कि हम मूड के हिसाब से चलना बंद कर दें, हम वो करें जो सही है, तब शायद ऐसा होगा कि हम अपने जीवन में डगमगाएंगे नहीं। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, या क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा? क्या उन्होंने ये कहा कि ठीक है तुम आराम कर लो, कल से शुरू कर देंगे? क्या उन्होंने ये कहा कि ठीक है जैसा तुम सोच रहे हो वही सही है, इसीलिए ये युद्ध जो है इसे भूल जाओ? आखिर क्या कहा भगवान ने अर्जुन से जिससे कि हमें भी ये प्रेरणा

तो जो भी हमने सोचा है, जो भी हम करना चाहते हैं, वो करेंगे कैसे? अगर आप किसी भी महान प्रतिभा के बारे में पढ़ें या किसी भी महान व्यक्तित्व के बारे में जानें, तो आप देखेंगे कि वो सफल इसीलिए हो पाए क्योंकि उनमें अनुशासन था। और जब हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की या इस समय की, तो ये भी तो अनुशासन ही सिखा रहा होता है कि आप अपने मूड के हिसाब से ना चलें। अगर सुबह उठने का एक समय नियत है तो उसी समय पर उठें। अगर सुबह आपने कोई रूटीन बना रखा है, आप नाम जप करते हैं, सिमरन करते हैं, इबादत करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी करते हैं, ये सभी तो अनुशासन का ही हिस्सा है, जो सब मिलकर एक महान चरित्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए मन के हिसाब से उसकी दिशा में ढलने की बजाय, अगर हम मन को अनुशासित करके और वो करें जो ज़रूरी है या जो हमने सोचा हुआ है, तो बेशक शुरू में ऐसा लगता है

जी हाँ, तो बात हो रही थी मूड की, मन की, के मन तो हमेशा बहाने ढूंढता रहता है और हम उन बहानों के साथ साथ निरंतर बहते जाते हैं, लेकिन फिर जब रुककर कहीं देखते हैं तो लगता है कि काश मन के हिसाब से ना चले होते। तो इसीलिए आज का जो प्रोग्राम था ना, ये भी इसीलिए था कि हम रुकें और सोचें कि जो कुछ चल रहा है उसमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ पर पहुँचना है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब परिस्थितियाँ बिल्कुल सही होती हैं तो हम चल भी पाते हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिन होती हैं तो फिर हमारी साधना

उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे

अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत

के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, जिस पर आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात। और बात हो रही थी सुबह सुबह की कि सुबह का एक फैसला पूरे

जी हाँ, आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और अब चलते चलते एक छोटी सी बात, आज एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि शाम तक मुझे अपने दिन पर गर्व हो कि हाँ मैंने अपना दिन बहुत अच्छी तरह से बिताया। तो बस ये छोटी सी बात आपके दिन को खुशनुमा बना देगी। फिलहाल आपको याद दिला दें कि अभी आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। तो पूनम को दीजिए अनुमति, प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही FM गोल्ड हर रोज़ सुनते रहिएगा। नमस्कार।

0: दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
1: पोलिंग हैज बिगन फॉर बाई इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। वोटिंग इज टेकिंग प्लेस फॉर बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी इन बिहार, माजलपुर इन गुजरात एंड दतिया इन मध्य प्रदेश। पोलिंग विच बिगन एट 7 AM विल कंटिन्यू टिल 6 PM। इन बिहार द बाई इलेक्शन फॉर

0: धनखड़ के स्वर्ण पदक जीतने के बाद दिलीप महादेव का भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और श्रोताओं, अब बारी है महानगरों की खबरों का रुख करने की। तो सरबजीत, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं चेन्नई में क्या है खास।
1: जी, रिफॉर्म्स इन द प्रोसेस फॉर रिक्लेमिंग अंडरलाइंग शेयर्स एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड्स वर्थ अबाउट 1 लाख

0: में वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले प्रसंस्कृत और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित एक सप्ताह के महास्वास्थ्य शिविर से राज्य भर में लगभग 95,000 लोगों को लाभ मिला है। 22 से 28 जुलाई तक चले इस अभियान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच, रक्तदान अभियान और कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी शामिल थे।
1: एंड न्यूज फ्रॉम हैदराबाद नाउ, तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी Harshan Reddy has clarified that the ongoing special intensive revision SIR of electoral rolls is strictly intended to prepare an accurate voter list and has no link to government welfare schemes. Reviewing the progress with district election officers, the chief electoral officer emphasized that only 5 days remain to achieve 100% digitization of enumeration forms by the August 3 deadline. Currently, 76% of the overall digitization is complete, with rural areas reaching 90% and several assembly constituencies achieving full completion. Furthermore, election authorities were instructed to expedite the rationalization of polling stations to ensure family members are assigned the same location. To maintain transparency, officials must obtain signatures from political party representatives on lists of absent, shifted and deceased voters. And Farad, what's the buzz from

0: अमेरिका में आज ही के दिन स्थापित हुआ।
1: 1921 ऑन दिस डे इंसुलिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड एज अ पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट बाय द कनेडियन साइंटिस्ट सर फेडरिक जी बैंटिंग एंड चार्ल्स एच बेस्ट।
0: सन 1930 में एनबीसी रेडियो पर डेथ वैली डेज का पहला प्रसारण हुआ।
1: 1930 ऑन दिस डे यूरुग्वे डिफीटेड अर्जेंटीना टू विन द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन फुटबॉल।
0: सन 2012 में उत्तरी ग्रिड में खराबी के चलते

0: Bharathan is noted for being the founder of a new school of filmmaking in Malayalam cinema, along with Padmarajan and K.G. George in the 1980s, which created films that were widely received while also being critically acclaimed.
1: और अब हम लोग याद कर रहे हैं मंदाकिनी को. मंदाकिनी हिंदी सिनेमा की वो खूबसूरत अदाकारा रहीं जो अपने ज़माने में फिल्म मेकर्स की बतौर एक्ट्रेस पहली पसंद मानी जाती रहीं. मंदाकिनी के करियर की

करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी

0: न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए

0: दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती का अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और

0: नागद सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है। वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल

0: दृष्टिकोण के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार।

जाने के बाद ऐवान ज़ेरीन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा ने कौमी तज़ीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को कल मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी तज़ीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। इस मुजवदा कानून के जरिए वंदे मातरम को कौमी तराने जनगण मन की तरह कानूनी तहफ्फुज़ हासिल हो जाएगा। इस मुजवदा कानून के जरिए कौमी तज़ीम की बेहरमती पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी के बाद ऐवाने बाला की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार के बांकीपुर हलके, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया हलके में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बिहार में बीजेपी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उनकी बांकीपुर सीट खाली होने के सबब वहां ज़िमनी चुनाव ज़रूरी हो गया था। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि राय दहिंदगान वोट डालने के लिए

गोयल ने मजीद कहा कि यह कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इकतसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाजरानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली कौंसिलों और सनती अंजुमनों के साथ मीटिंग की जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा लेना था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के बाद

0: मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता और 10.83 सेकेंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया जमीर। लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल मंजूर होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इनकलाब, 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम। रियासत में फास्ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसी अखबार ने नीट पेपर लीक की पूरी साजिश बेनकाब करने के सीबीआई के दावे की खबर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वंदे मातरम की तौहीन को अब काबिले सजा जुर्म करार दिए जाने को अपनी पहली खबर बनाया है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा का इल्तिजाम है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुहरा अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद बासी

0: और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता को भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

लगभग 39,000 परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में बताया कि 24 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 38,955 सौर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 38,318 पैनल 3 किलोवाट एक से अधिक क्षमता वाले हैं, जबकि 387 पैनल 2 से 3 किलोवाट एक श्रेणी में और 103 पैनल 2 किलोवाट एक तक की क्षमता वाले हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद

ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का ये पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश

ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल लगी। और देखिए ना, मौसम बदलता है और मौसम के साथ साथ हमारे त्यौहार बदलने शुरू हो जाते हैं, हमारी खुशियों का लेवल अलग हो जाता है और उसी के साथ साथ ना, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम हर मौसम को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं ना जैसे शायद ही किसी और हिस्से में होता होगा दुनिया के। चलिए, आज से सावन लगा है, इसी को सेलिब्रेट करते हैं इस गाने के माध्यम से।

के हिसाब से ना बदल दिया है, उसके मतलब जो है वो अपने हिसाब से बदल दिए हैं। जैसे कि थम्स अप जो है इमोजी का मतलब सिर्फ ओके नहीं रह गया है, बल्कि जब आप किसी बात को लेकर रूखा व्यवहार करते हैं तब भी थम्स अप का इस्तेमाल करते हैं। जुड़े हुए हाथ नमस्ते हैं या थैंक यू या फिर सरकास्टिक वे में आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फैसला भी हम अपने मन मुताबिक कर लेते हैं। तो ये है इमोजी की भाषा, आप जितनी जल्दी समझ जाएं अच्छा है, क्योंकि अब तो ज़्यादातर लोग इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसका मतलब आप कुछ भी निकालें पर इमोजी को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है।

पीएम युवा योजना युवाओं में उद्यमिता और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और जो भी जरूरी संसाधन है वो सब उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वो स्वरोजगार के अवसर सृजित कर आत्मनिर्भर बन सकें। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल लगी। मैं हूँ आपके साथ नीतू।

ये जो क्या होगा है ना, ये जो क्या होगा है कि चिंता, ये ना हमें बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करने पे मजबूर कर देती है। यानी हम जब इस तरह की चीज़ें सोचने लग जाते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये टेंशन जब दिमाग में आ जाती है ना, तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम उन विचारों

0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि
1: हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कावड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो।
0: कावड़ यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने आशा व्यक्त की

कि आस्था, संयम और भक्ति का ये पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पवित्र महीने में सभी के जीवन में खुशी, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

में 15% की वृद्धि। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। अमेरिका की संघीय अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले व्यक्ति को आतंकवाद का दोषी ठहराया। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप लगाया। दुरोव को अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के पैरा एथलीट दिलीप गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासित ने रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान में कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से उत्पन्न अनिश्चितता से जूझ रहे हैं।

0: अमेरिका की संघीय अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले व्यक्ति को आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दशकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सहित सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फीथिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। रूस के सरकारी मीडिया ने कहा है कि रूस की संघीय सुरक्षा सेवा FSB ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप लगाया है। दुरोव को अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
1: संघीय सुरक्षा

0: सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले व्यक्ति को आतंकवाद का दोषी ठहराया। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप लगाया। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के पैरा एथलीट दिलीप गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिर ने रजत पदक जीता। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुनील वर्मा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines: India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. United States resumed airstrikes inside Iran after a brief pause. Author Salman Rushdie's attacker convicted of terrorism in US federal court. Russia charges Telegram founder Pavel Durov with facilitating terrorist activities, initiates process to place him on international wanted list.

0: करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप और इनके अलावा मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान और शमसुल यासीन, इन सभी ने ये गाना सुनना चाहा है फिल्म धरती कहे पुकार के फिल्म से। आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स, नीतू है आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए

पोस्ट में गृहमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का ये पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। रक्षा मंत्री ने भी इस पवित्र महीने में सभी के जीवन में खुशी, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में कई नदियां उफान पर हैं। राज्य के कई हिस्सों में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी

फिर सुन रहे हैं आप, बात हो रही है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की। मैं हूँ आपके साथ नीतू। और कोई भी ऐसे जंगल होते हैं या उद्यान होते हैं ना, तो वहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप पक्षियों को, जानवरों को उनके प्राकृतिक व्यवहार में देख सकते हैं, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी व्यवधान के। झील के चारों ओर बने पैदल मार्ग हैं, वहाँ वॉच टावर है, और वहाँ पर ना इस तरह से उनको तैयार किया गया है कि जो आने वाले पर्यटक हैं या आप अगर जाते हैं वहाँ, तो पक्षियों को बहुत ही करीब से आप देख सकते हैं बिना उन्हें परेशान किए। और अगर आपके मन में भी होना ऐसा कि उन्हें छूना है या उन्हें, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो उनकी जगह है, उन्हें उनके ही घर में जाके परेशान नहीं करना चाहिए। सुबह की जो हल्की धूप है, पानी की सतह पर तैरते वहाँ पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, और एक साथ उड़ान भरते ढेरों पंछी और चारों तरफ गूंजती चहचहाट ना ऐसा अनुभव कराते हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहाँ आप जाएंगे तभी महसूस कर पाएंगे।

अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक नेचुरल स्टूडियो है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय झील पर पड़ती सुनहरी रोशनी, पानी में बनते शैडो, उड़ान भरते पक्षियों के जो सीन है ना, उन्हें कैमरों में आप कैद कर सकते हैं। यहाँ पंछियों के अलावा नील गाय, सियार, मॉनिटर लिजर्ड, कछुए, तितलियाँ और बहुत तरह के पौधे भी देखने को मिलते हैं। यही जैव विविधता इस छोटे से राष्ट्रीय उद्यान को महत्वपूर्ण बनाती है। कई बार तो सर्दियों में आप सुबह वहाँ आर्टिस्ट लोगों को भी देख सकते हैं जो वहाँ बैठकर स्केच बना रहे होते हैं। और सर्दियों का मौसम इसीलिए ना, देश विदेश से यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि बर्ड फोटोग्राफर हैं और बहुत सारे पर्यावरण शोधकर्ता भी यहाँ पहुँचते हैं।

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

आप सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जाना चाहते हैं तो दिल्ली और इसके आसपास के लोग तो अपनी कार से या कैब के माध्यम से भी जा सकते हैं, और अगर आप स्टेशन मेट्रो स्टेशन यूज़ करते हैं, मेट्रो से जाना चाहते हैं तो मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम उतर सकते हैं और वहाँ से आपको कैब लेनी होगी, या अर्जनगढ़ उतर सकते हैं, वहाँ से भी आपको कैब लेनी

पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुसंधान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्र

0: आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन के सभी श्रोताओं को प्रतिभा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर।

बिहाइंड द स्कैम, यानी धोखाधड़ी के जाल में फंसे लोग। यह हमें सतर्क रहने और दूसरों को जागरूक करने का संदेश देता है। हमें याद रखना होगा कि झूठे नौकरी के वादे, विदेश भेजने के लालच या ऑनलाइन ठगी के जाल में हम ना फंसे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। तो आज आइए हम सब मिलकर मानव तस्करी मुक्त, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण का संकल्प लें। ये दिन तो विशेष है ही है, इसके साथ

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी नीला आकाश। दोस्तों, पानी की हर बूंद कीमती है, क्योंकि धरती पर पीने का जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी हो जाती है पानी की हर बूंद को बचाना, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को साफ स्वच्छ जल दे सकें। और इसी दिशा में कैच द रेन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। श्रोताओं, ये अभियान हमें संदेश देता है कि जहां भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, तो वर्षा जल को संचित करें। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का जो संग्रह है वो बढ़ाना है, और साथ ही साथ भूजल स्तर को सुधारना भी है। ये अभियान तालाब, कुएं, झील और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण की बात करता है और उनको पुनः जीवित करने की भी बात करता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। श्रोताओं, हर व्यक्ति और समुदाय को जो है वर्षा जल बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा भी और हम सब जानते भी हैं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। सोचिए, अगर पानी हमें पीने को ना मिले तो हम कितने परेशान हो जाएंगे। तो इसे बचाने की जिम्मेदारी

परिवार की धुरी होती हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। ऐसे में महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, कि बाहर का काम है, घर का काम है, सुबह भाग भाग कर काम करना। तो जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की पहचान है, और ऐसे में जब जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज़्यादा हो, भाग दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना ध्यान रखेंगी तो वो परिवार का ध्यान भी रख पाएंगी, और ये उनके लिए तो ज़रूरी है ही है, परिवार के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे उन पोषक तत्वों की जिनकी पर्याप्त मात्रा महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन यानी लौह तत्व की। अक्सर महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयरन से भरपूर भोजन ज़रूर लें, और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह से ही आयरन सप्लीमेंट लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता है, तो अपने आप तो बिल्कुल ना ही लें। दूसरा है कैल्शियम और विटामिन डी। ये दोनों मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 भी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी कमी से कमजोरी, हाथ पैरों में झनझनाहट और

क्षेत्र में खास उपलब्धि हासिल की हो। बहादुरी, खेल, विज्ञान, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति, ये वो क्षेत्र हैं जिसमें बच्चा अगर कुछ खास करता है तो उसके कार्य को, उसकी उपलब्धि को एक नई पहचान दी जाती है। आपको ये

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 1:11 हुए हैं और इस वक्त तय करेंगे कलाकार बेमिसाल का ये सफर। आज जिस शख्सियत के बात

सपने को देखते हुए वो पिता के साथ मुंबई आ पहुंचे और आगे का सफर कैसा रहा इस पर भी बातें करेंगे। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय कर रहे हैं मैं और आप।

0: सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम न भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। इस गीत के बाद सुनिएगा उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: में श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पद जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पद जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं।
1: शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट

वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी की सिर्फ ख्वातीन पर मुश्तमिल सेलिंग टीम से बातचीत की और उनकी गैरमामूली कामयाबी और पुख्ता आज़म की सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि सेलिंग उनकी कामयाब मुहिम मुल्क के लिए इंतहाई बाइस फ़ख्र है। शरवन महीने की सालाना कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंद गंगा जल लेने

0: any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship, any associates, any subcontractors, any provider of support of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination.
1: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए

0: प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने

0: मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
3: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है।

0: की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों

दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कोई किसान पेंशन योजना ज्वाइन करते हैं तो उनको 200 रुपये प्रति माह देने होंगे और 200 रुपये सरकार अपनी तरफ से उस खाते में डालती है। फायदा इस योजना का यह है कि जब किसान की उम्र 60 वर्ष हो जाती है
1: जी,
0: जब वो बहुत कड़ी मेहनत नहीं कर सकता खेती में, उस वक्त उनको एक सहारा मिलता है पेंशन के रूप में
1: जी।
0: तो इस मानधन योजना में जो पेंशन मिलती है 3000 रुपये प्रति माह, जैसे ही किसान की उम्र 60 वर्ष होगी उसको जीवन पर्यंत
1: जी
0: 3000 रुपये प्रति माह मिलता रहेगा। तो एक बुढ़ापे की लाठी कह सकते हैं इसको, उस उम्र में किसान बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता।

0: छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम जगह है, उनके लिए भी इस योजना में काफी कुछ है।
1: और डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी आप इस बारे में दे रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो किसान इच्छुक है, जो इसके इसका लाभ लेना चाहते हैं, लाभार्थी बनना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? मतलब किस तरह से वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए उनको क्या दस्तावेज देने होंगे, क्या पात्रता होगी, इस बारे में?
0: जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि किसानों को जब तक ये पता नहीं होगा किससे संपर्क करें। तो आमतौर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की जो भी योजनाएं संचालित होती हैं, वो राज्यों के कृषि विभाग, बागवानी विभाग, उनके

0: पीएम किसान सम्मान निधि योजना बहुत चर्चित है, पॉपुलर है और किसानों में काफ़ी जागरूकता है इसके बारे में। इसके लिए जो पात्र किसान है, पात्र में यह है कि ज़मीन की पहले सीलिंग रखी गई थी, वो अब नहीं है।
1: अच्छा।
0: कोई ऐसा किसान नहीं हो जो इनकम टैक्स पे करता हो, मान लो लास्ट ईयर किया है, मतलब अच्छी इनकम वाला, तो वो इसका पात्र नहीं होगा। जो किसान खेती पर ही निर्भर है वो इसके पात्र होते हैं। और दूसरा, वो कॉमन सर्विस सेंटर,

0: तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र।

0: जाता है और मान लो वो फसल चौपट होगी तो लगभग एक साल पीछे वो चला जाता है
1: जी।
0: प्लस वो पैसा लगाता है अपना पास होते हैं तो उधार लेके या कहीं से भी, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति किसान की हो जाती है। तो उनको एक कवर देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए फसल बीमा योजना चालू की गई थी और फसल बीमा योजना वैसे बहुत पहले से चल रही, लेकिन उसमें काफ़ी सुधार किए गए, इम्प्रूवमेंट किया गया किसानों को जल्दी से जल्दी, विपरीत परिस्थितियां जब हों, फसल चौपट हो जाए तो उनको उनका मुआवजा मिले। और कोशिश की गई कि ये जैसे हमारी सम्मान निधि है, इन सब से भी उसको जोड़ा गया, बैंक में बताया गया सम्मान निधि वगैरह ले रहे हैं, तो उन किसानों को कोशिश की जाए कि वो इससे जुड़ें और इसका लाभ लें, नहीं तो विपरीत परिस्थितियों में कुछ नहीं होता।

0: एक ही किसान नहीं ले सकता।
1: नहीं, ऐसा योजनाओं में तो नहीं है जो पात्र किसान है। मान लो किसी को सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है
0: जी,
1: तो वो मानधन वाली जो स्कीम है उसमें उसको शायद लाभ नहीं मिलेगा,
0: नहीं मिलेगा,
1: क्योंकि पेंशन का उसको सरकार वैसे दे रही है, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे मानधन योजना सम्मान निधि से भी बेटर है लॉन्ग टर्म में, उसको जो ओल्ड एज में पैसा मिलेगा उस हिसाब से। लेकिन जो पात्रता है उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है जो किसान, लेकिन बागवानी की जैसे कोई बेनिफिट ले रहा है तो उसको ये नहीं है कि वो मानधन या सम्मान निधि नहीं ले सकता,
0: नहीं ले सकते हैं। यानी ऐसी योजनाएं भी हैं जो एक ही समय पर आप अलग अलग योजनाओं का भी लाभ
1: ले सकते हैं,
0: लेकिन वही ऐसी योजनाएं भी हैं।
1: लेकिन राज्य सरकारें कई बार देखती हैं बजट उपलब्धता पर, भाई आपको ये मिल गया तो क्यों ना दूसरे किसानों को कवर किया जाए, तो उस केस में वो बिना किसी गाइडलाइंस के भी कह देते हैं भाई आपको ये दे दिया अभी आगे दूसरों को मिलने दो।
0: जी, सवालों का सिलसिला डॉक्टर साहब ऐसे ही जारी रहेगा, रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: तो आप जैसे कि अभी बता रहे थे कि जो भी हमारी कृषि पेंशन वाली योजना है, तो इसमें आप कोई और जानकारी भी देना चाह रहे थे कि कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे सर आप?
1: हाँ, मानधन वाली योजना में मैं ये कहना चाह रहा था कि पेंशन संबंधी और भी योजनाएं हैं सरकार की, लेबर मिनिस्ट्री की हैं और कई मंत्रालयों की, तो पेंशन वाली योजना सिर्फ एक का ही लाभ ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी और कामगार वाली योजना या लेबर वाली मिनिस्ट्री की योजना है उनको अगर आप लाभ ले रहे हैं तो मतलब एक ले सकते हैं एक बार में
3: जी,
1: बाकी तो कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है
3: जी। डॉक्टर साहब, जैसे एक और योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम से काफ़ी पॉपुलर रही है, और सॉयल हेल्थ कार्ड लगभग देश के सभी किसानों में वितरित किए गए। इसमें पूरी मशीनरी राज्यों की केंद्र की लगी हुई थी, तो ये ख्याल रखा गया था कि हमारी जो मिट्टी है जिससे हम फसल लेते हैं, उपजाते हैं फसल, उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो पैदावार बढ़िया होगी
3: जी,
1: और हमारा खर्चा भी कम होगा। तो इसलिए, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले काफ़ी सालों से कि किसान अनावश्यक रूप से, उनको उतना ज्ञान नहीं है, पता भी नहीं मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, DAP यूरिया ये सब उपलब्ध हुआ नहीं, खरीद के लोन लेके कर्जा लेके भी खेतों में छिटक दिया
3: जी,
1: जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती कई बार। तो सॉयल हेल्थ कार्ड में जो पोषक तत्व की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी कमी है उन्हीं को डालना है, तो एक तो किसान की जेब पर खर्चा कम होगा और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाद और उर्वरक डालेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य खराब होगा, मिट्टी में जो हमारे मित्र जीव हैं वो भी

0: मार्केटिंग में, कोई बागवानी में, तो इस तरीके से महिला किसान विगत वर्षों में काफी प्रगति की है। उसकी हमने काफी सारी मंत्रालय की ओर से सक्सेस स्टोरीज भी प्रिंट की है, कई सारी किताबें छापी हैं।
1: डॉक्टर साहब, बड़ा संक्षेप में, अगर और भी महिलाएं हैं और उनको नहीं इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो वो कैसे आगे आ सकती हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं, बड़ा संक्षेप में?
0: जी बिल्कुल, महिला किसान के लिए तो बहुत सारी स्कीम है, वो जमीन कम हो या नहीं हो तो भी कई तरह के व्यवसाय कर सकती हैं, जैसे

0: 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। पहले स्थगन के बाद दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी

0: राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। श्रावण का पवित्र मास आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही झारखंड के देवघर में आस्था और विश्वास के महापर्व राजकीय श्रावणी मेला में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Rajya Sabha has taken up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill was already passed by the Lok Sabha yesterday. When the House reassembled post-lunch, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, moved the bill. Chairman C.P. Radhakrishnan said that 7 hours have been allocated for the discussion on the bill. Moving the bill, Dr. Jitendra Singh said this bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youth of the country. He said under the new legislation, the investigation must be completed within 2 months and trial within 3 months.

है और चंपा साहू हैं। और इसके साथ साथ जिन जिन का मैं नाम ले चुकी हूँ ना, आप वो दोबारा मैसेज ना करें, क्योंकि फिर वो बार बार आपका मैसेज आता है तो थोड़ी सी हमसे भी गलती हो जाती है, माउस जो है वो क्लिक हो जाता है। श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से हमें मैसेज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी एक गीत की फरमाइश की है, कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। यहाँ पर सीमा दीदी सलाम भेजा है, किसने भेजा है, मोताला बाज़ार से बबलू ठेकेदार हैं, शेख शागीर हैं, शेख वज़ीर हैं, सोहेल शेख हैं और सैयद तहमूर हैं, साथ में इनके साथ हैं शामिर खान और अजलान जी हैं। ओके, तो इसी तरह आप अपने संदेश से हम तक पहुंचा रहे हैं। एक आध और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर बहुत खूबसूरत गीत। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमारे पास आफ्ताब अंसारी साहब का मैसेज आया है और रियाज अंसारी हैं, उनके साथ मोहम्मद कैफ हैं, अनवर मास्टर हैं, लुबना अंसारी हैं और आलिया अंसारी हैं। तो अब बारी है एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत से गीत की। रफ़ी साहब का एक गीत है, आप तक पहुँचा रही हूँ, बहुत डिफरेंट गाना है। कल 31 जुलाई है साथियों, रफ़ी साहब की बरसी है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अच्छा लग रहा है। अल्तमश समीना और इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। एक छोटी सी गुजारिश करूं आपसे, वैसे ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी नहीं, आप ना अपने नाम, जैसे दिल की बात जो है वो तो आप चलिए लाइन में लिखते हैं, नाम अगर आप एक के नीचे एक लिखेंगे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। उमेश कुमार जी नमस्कार, आपने हमें ये खैला से भेजा है। उमेश कुमार हैं, इनके साथ दिनेश कुमार हैं, अनोज कुमार हैं और सोनित कुमार हैं। जब मुझे ऐसा एहसास होने लगता है ना कि बहुत ज़्यादा नाम ले लिए हैं, तब गीत की याद आ जाती है। वैसे गीत बिल्कुल तैयार है जी। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी हैं, निगत परवीन हैं, शहनवाज अब्बासी हैं, सरफराज हैं इनके साथ, फरदीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं, अबान हैं और पूरा का पूरा हमारा जो आबासी परिवार है, इन्होंने हमें ये लिखकर भेजा है। डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख हैं, ये इन्होंने सुधाकर राजे भी हैं, ये इन्होंने कहाँ से भेजा है, मराठवाड़ा से हमें ये मैसेज किया है। कुमार सचिन हैं, इनके साथ प्रथमेश हैं और कुमार सर्वद देशमुख भी हैं, कुमारी प्रणाली देशमुख हैं, कुमारी सानवी देशमुख हैं और कुमारी हर्षिता देशमुख भी हैं। अब नाम बहुत ज़्यादा हो गए,

जो फरमाइश है वो मैं पूरी कर पाऊँ। और मेरे कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं, इन्होंने भी अपना संदेशा भेजा है, बहुत शुक्रिया। ये एक नाम मैं पहले पढ़ चुकी थी, उनका उनकी पसंद का गीत है, और नाम मैंने आपका पहले ले लिया, अभी मुझे याद नहीं है, शुरू में ही ले लिया था लेकिन गीत मैंने निकाल के रखा था। ये लीजिए सुनिए, ये तो हमें भी बड़ा पसंद है।

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम न भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है।

में मैं ढूंढ रही हूँ कि आपका नाम कहाँ है। यही इसीलिए मैं कहती हूँ कि नाम आप कृपया एक के नीचे एक लिखेंगे तो एकदम से नाम पर हमारी नज़र जाती है, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है ना, तो ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी से हम नाम पढ़ दें। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा और ईशान हैं और पूजा परिहार हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेशा भेजने के लिए। एक बार पुनः आप

तो आप हैं एफएम गोल्ड 100.1 के साथ, और हमारे साथ तो आप हैं ही गुजरात से अजीत भवसार और प्रमिला भवसार का ये संदेश आया, बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, एक बार फिर मैं खो गई हूँ आपके पैराग्राफ में और वही गाना देखने की कोशिश कर रही हूँ कि नाम हेमलता हैं, साथ में हिना हैं, हर्षित हैं और खुशी गोस्वामी हैं, लालगिरी गोस्वामी हैं ये।

फरमाइश पूरी कर रहे हैं आप, पता नहीं अब आपको अभी भी ये प्रोग्राम जो जैसे आपने शब्द लिखा है वो हम नहीं पढ़ सकते हैं यहाँ पर माइक के पास, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि तहजीब की लौ से बुझते चराग का धुआं भी महकदार हो जाता है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना चाहिए। बहरहाल आइए अब आखिरी गीत आज के प्रोग्राम का, ये भी 60 के दशक का गीत है, बहुत सरल बहुत प्यारा सा गाना है, लीजिए सुनिए।

सावन प्रोग्राम में मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके संदेश से पढ़ते हुए, और आपको भी जो अन्य लोगों की फरमाइशें हैं वो भी बहुत अच्छी लगी होंगी, मन भाई होंगी। और इस उम्मीद के साथ मैं सीमा वर्मा अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कुछ ही देर में हम समाचार सुनेंगे। आप सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1। इजाज़त, नमस्कार।

और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव का मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 20%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 48% मतदान दर्ज हुआ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता

101.1 मेगाहर्ट्ज। आइए साथियों, आपको बताते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आने वाले घंटों में कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। आधे घंटे परिक्रमा के साथ रहने के बाद आप शाम 5:00 हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के।
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गांधीनगर गुजरात में आजीवन सदस्य के एक पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। आजीवन सदस्य के पास भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के लिए स्वीकार्य वेतन या रुपए 5 लाख प्रति माह के समेकित वेतन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प होगा। पद का विवरण और पात्रता शर्तें आर्थिक कार्य विभाग के अधीन मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। वेबसाइट का पता है dea.gov.in। निर्धारित प्रारूप में पात्र उम्मीदवारों के आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उचित माध्यम से आर्थिक

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी कुछ ही देर पहले आपने और हमने मिलकर सुना रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। और साथियों, अब वक्त हो चला है परिक्रमा कार्यक्रम का। कुछ ही देर में परिक्रमा कार्यक्रम हम मिलकर सुनते हैं।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। आज 30 जुलाई है और आज की ये शाम बेहद खास है, क्योंकि आज कैलेंडर का वो पन्ना हमारे सामने खुला है जो हमें अपनों के और करीब लाता है। आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ये एक ऐसा दिन है जो हमें दूरियां मिटाकर हाथ मिलाने की सीख देता है।

0: अनुजा, इस गाने के जो बोल है उसका एक एक बोल जो है वो कहीं ना कहीं दोस्ती की परिभाषा को सच करता नजर आता है.
1: सीरियसली इट क्रिएट्स गूज़बम्प्स विद इन अस.
0: जी बिल्कुल अनुजा, क्योंकि दोस्ती जो है वो एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं. ये बिना शब्दों के एक दूसरे को समझने और हर सुख दुख में साथ निभाने का नाम है. और आज का ये दिन उन्हीं खास दोस्तों के नाम है जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस उन मुस्कुराहटों, अनगिनत यादों और निस्वार्थ साथ का उत्सव है जो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं. तो अनुजा, इस मित्रता दिवस पर आइए हम उन सभी दोस्तों का आभार व्यक्त करें जिन्होंने हमारे कठिन दिनों को आसान बनाया, हमारी हार में

0: Rosy, as Sawan arrives, it almost feels as though nature itself has joined the celebration. Trees turn greener, rivers flow with renewed energy.
1: बिल्कुल अनुजा, और वो जो ऊर्जा होती है जो नवीन होकर आसपास फैलती है, उसे कहीं ना कहीं हम अपने शरीरों में भी महसूस कर पाते हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो भारतीय कैलेंडर है उसमें सावन को सबसे खूबसूरत और आध्यात्मिक रूप से अहम महीनों में गिना जाता है। लेकिन अनुजा, भारतीय संस्कृति में इस महीने का इतना खास महत्व क्यों है?
0: Shravan is the fifth month of the Hindu lunar calendar and usually falls during the monsoon season. It derives its name from the Shravan nakshatra, the star constellation that is prominent during this period.
1: और अनुजा, सबसे अहम बात यह है कि इस महीने के साथ ही भारत में त्योहारों की झड़ी लग जाती है। इसके बाद कई सारे त्योहार आते हैं, जैसे हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, और ये लिस्ट जो है बहुत लंबी होती जाती है।
0: जी हाँ, and in many ways, Shravan serves as the spiritual gateway to this beautiful festive journey, as you just mentioned the different festivals.
1: जी.
0: At the heart of this sacred month is the worship of Lord Shiva.

0: गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं।
1: एंड सर फिरोजी, बियॉन्ड इट्स स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, श्रावण ब्यूटिफुली रिफ्लेक्ट्स नेचर्स ओन रिदम। अराइविंग इन द हार्ट ऑफ द मॉनसून, इट रिमाइंड्स अस ऑफ रिन्यूअल, ग्रेटिट्यूड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट।
0: बिल्कुल अनुजा, भारत के उत्सव केवल कैलेंडर की तारीखों या धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं दिखाते, बल्कि ये जीवन को गहराई से जीने का एक माध्यम है। और सावन के आते ही कई सदियों पुरानी परंपराएं जो हैं वो एक बार फिर जिंदा हो उठती हैं।
1: ऑफ कोर्स, इन अ वर्ल्ड सर्चिंग फॉर माइंडफुलनेस, इंडिया हैज बीन लिविंग इट फॉर सेंचुरीज, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ कल्चर वेयर डिवोशन एंड जॉय ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। एंड नाउ सर फिरोजी, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट्स अ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members. And these timeless words of Mahatma Gandhi reminds us that the strength of a nation is not measured only by its economy or technology, but by how safely and compassionately it protects those who are most at risk.
0: बिल्कुल अनुजा, इसी

0: अभियान चलाकर बच्चों की सुरक्षा के उपाय करके और हेल्पलाइन शुरू करके तस्करी रोकने की कोशिशों को मजबूत किया है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई जिसका हम सभी को सामना करना पड़ेगा अनुजा, वो ये है कि सिर्फ कानूनों से तस्करी को खत्म नहीं किया जा सकता।
1: एब्सोल्युटली, कम्युनिटीज, फैमिलीज, एम्प्लॉयर्स, स्कूल्स एंड एवरी सिटीजन हैव अ रोल टू प्ले। देयर इज अ फेमस सेइंग ऑफन एट्रिब्यूटेड टू एडमंड बर्क, ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर द ट्रायंफ ऑफ इविल इज दैट गुड पीपल डू नथिंग।

0: आत्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। एक ओर सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंज रही है, वहीं रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों की अटखेलियों के चलते हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। दोनों अभयारण्य राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस पर हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी दे रहे हैं।
1: अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला जहां आपस में जुड़ती हैं, उन्हीं तलहटियों में मौजूद है बाघों के लिए एक सुरक्षित आशियाना रणथंभौर बाघ परियोजना। तकरीबन 1500 वर्ग किलोमीटर में फैले वन क्षेत्र को वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। वर्तमान में यहां करीब 700 वर्ग किलोमीटर के दायरे में लगभग 72 नर और मादा बाघ और उनके शावक विचरण करते हैं और इसी वजह से ये अभयारण्य लाखों की संख्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानी, फोटोग्राफर, मूवी मेकर तथा रिसर्चर्स की पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2008 के बाद से यहां से कई वन क्षेत्रों में टाइगर रिलोकेट भी किए जा चुके हैं। अगर सरिस्का की बात करें तो इसे साल 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और ये देश का 11वां टाइगर रिजर्व बना। यहां भी बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में बाघिन एस

0: स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसे साकार करने में गुजरात का यह मॉडल एक बेहतरीन मिसाल बन गया है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खूंट।
1: And if we talk about the business news of the day, benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 274 points or 0.35% to close at 77,928, while Nifty added 67 points or 0.3% to settle at 24,317. For more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. every day. And what do you have from the field of sports, Sir Firozi?
2: Anuja, सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है।
1: एंड द इंडियन मेंस टीम हैज स्टॉर्मड इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द

0: पिता एस नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे मुतु लक्ष्मी की माँ देवदासी चंद्रामल के साथ विवाह के कारण अपने परिवार से बहिष्कृत थे। मुतु लक्ष्मी को अपने ननिहाल से विशेष लगाव था और ननिहाल से इसी निकटता ने उन्हें देवदासी समुदाय और उसकी समस्याओं का बोध कराया। नारायण स्वामी अय्यर ने परंपरा तोड़ी और मुतु लक्ष्मी को विद्यालय भेजा।
1: जब मुतु लक्ष्मी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तो उन्होंने महाराजा कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन का विरोध किया गया क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक इससे कॉलेज का माहौल खराब हो जाता। लेकिन पुदुकोट्टई के महाराजा ने उन आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और मुतु लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया।
0: उन्होंने मुतु लक्ष्मी को छात्रवृत्ति भी दी। कॉलेज के दिनों में मुतु लक्ष्मी की मुलाकात सरोजनी नायडू से हुई और वे महिलाओं की सभाओं में जाने लगीं। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने मुतु लक्ष्मी के जीवन को बहुत प्रभावित किया।
1: सन 1930 में मुतु लक्ष्मी रेड्डी ने मद्रास विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया। उसे बाद में देवदासी उन्मूलन अधिनियम के नाम से जाना गया। उस विधेयक को कानून बनने में 15 से अधिक वर्ष लग गए।
0: मुतु लक्ष्मी रेड्डी जीवन भर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रहीं। 22 जुलाई 1968 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को शत शत नमन।
2: आज ही जयंती है जानी मानी अभिनेत्री सुलोचना लाटकर की भी। ये मराठी और हिंदी सिनेमा की भारतीय अभिनेत्री

0: का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजनावकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों, युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और प्रश्न पत्र लीक को कतई बर्दाश्त नहीं करने के मोदी सरकार

सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन लीग ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई है। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। नीरज पांचवें, रोहित और यशवीर नौवें और दसवें स्थान पर रहे। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गाते गुनगुनाते बिल्कुल तैयार है सफ़र चलने के लिए, और तरन्नुम भरे लहजे में अगर ये सफ़र हमारे साथ साथ आगे बढ़े तो कैसा रहे साथियों। स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 5:11:40 सभी सुनने

0: 1 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

मैं उम्मीद करती हूँ कि गाते गुनगुनाते हुए सीमा के साथ आपका जो सफ़र है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। समय भी आपको बता दूँ 5:22

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 विद लोकसभा अप्रूविंग इट टुडे। द राज्यसभा पास्ड द लेजिस्लेशन यस्टरडे। द लॉ विल फर्दर अमेंड द प्रिवेंशन ऑफ

उपलब्धियों का विस्तृत विवरण जारी किया है। ये योजना देश के प्रतिष्ठित शीर्ष रैंक वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटर के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है। साथ ही पात्र छात्रों को पारिवारिक आय के आधार पर ब्याज छूट के माध्यम से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जिससे उच्च शिक्षा हासिल करने में आने वाली आर्थिक तंगी कम होती है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल बनाई गई है। लेकिन श्रोताओं, ये योजना केवल शिक्षा ऋण देने तक सीमित नहीं है। ये योजना भारत को सतत विकास लक्ष्य 4 यानी SDG 4 की दिशा में प्रगति करने में योगदान देती है। SDG 4 का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। ये पहल शिक्षा में समान अवसर, सामाजिक समावेश, आर्थिक सशक्तिकरण और विकसित भारत के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने से भी जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इससे विद्यार्थियों को क्या लाभ मिल रहे हैं।

श्रोताओं, पिछले एक दशक में भारत में उच्च शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में जहां उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात लगभग 23.7% था, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 30% तक पहुंच गया है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी उनके

वर्तमान में देश के 1425 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान इस योजना के दायरे में आते हैं। इनमें केंद्रीय संस्थानों के साथ साथ NIRF रैंकिंग के आधार पर चुने गए प्रमुख सरकारी और निजी संस्थान भी शामिल हैं। योजना के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से जुड़े लगभग सभी आवश्यक खर्चों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेस शुल्क, लैपटॉप, अध्ययन सामग्री तथा

संभव हो रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में शिक्षा ऋण के लिए पोर्टल पर 6,45,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,10,667 आवेदन प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत थे। इन आवेदनों में से 70,852 शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए और 67,728 ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि योजना का लाभ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है। योजना सामाजिक और लैंगिक समावेशन को भी बढ़ावा दे रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में 2,76,000 से अधिक महिला विद्यार्थियों ने शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया और बड़ी संख्या में उनके ऋण स्वीकृत भी हुए। ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों सहित सभी पात्र वर्गों को भी समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग

0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् तासां साफल्यपूर्णं सागर तरण अभियानं राष्ट्राय गौरवस्य विषयः वर्तते। श्री सिंहः प्रोदीरितवान् यत् दलस्य एषा अलौकिकी उपलब्धिः वर्तते।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: पाकिस्तानाधिकृते जम्मू कश्मीरे सोमवासरे पाक सुरक्षा बलैः शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारिणां विरुध्य नृशंस कार्याचरणं पश्चात् अद्य चत्वारिंशत् जनानां निधनानन्तरम् अपि उग्र विरोध प्रदर्शनं निरन्तरं प्रवर्तते। JAAC इत्याख्याया संस्थया सम्बद्धाः सामाजिक माध्यम संकेताः आक्षेपम् अकुर्वन् यत् पाक सुरक्षा बलैः प्रदर्शनकारिणाम् उपरि घातक शस्त्राणि प्रयुक्तानि। JAAC संस्थया संयुक्त राष्ट्र संघाय अन्ताराष्ट्रिय मानवाधिकार संघटनेभ्यः च साग्रहम् आवेदितं यत् ते अस्मिन् विषये शीघ्रमेव हस्तक्षेपं कुर्युः। ग्लास्गो नगरे आयोजितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य प्रसिद्धः कुन्त प्रक्षेपकः नीरज चोपड़ा स्वस्थानं सुरक्षितम् अकरोत् इति वार्ताः।

0: लाभ में रही हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली जो प्रमुख कंपनियां रही उनमें मारुति सबसे ऊपर है। इसके शेयर 1.8% लाभ में रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% से अधिक का मुनाफा हुआ। रिलायंस के भाव 1.4% से अधिक ऊपर उठकर बंद हुए। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही अडानी पोर्ट्स, जिसे 3.3% का नुकसान हुआ। इंडिगो के शेयर 0.9% नीचे आ गए। बजाज फिनसर में 0.8% की गिरावट हमने देखी।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 16 out of the 27 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dipped 2.1%, housing finance slipped 1.3%, and mid-small private banks' quality tilt fell 0.8%. In contrast, auto rose by 1.6%, energy advanced over 0.7%, and consumer discretionary gained 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,630 companies declined, 1,601 companies advanced, and 176 companies remained unchanged.
0: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया आज 3 पैसे कमजोर हुआ, 95.68 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत जी, बाजार में आज कुल मिलाकर यदि हम देखें तो प्रमुख सूचकांक तो बढ़त में रहे हैं, लेकिन विस्तृत बाजारों में निफ्टी पैक का

कोरिया का कोस्पी बिकवाली के दबाव में 1.2% से अधिक नीचे आ गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% घाटे में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई। ताइवान का ताई एक्स 0.2% से अधिक नीचे आकर बंद हुआ। इसके विपरीत जापान में खरीदारी तेज रही और निक्केई 225 सूचकांक 0.7% लाभ में रहा। हांगकांग के हेंगसेंग सूचकांक में 0.2% के आसपास की वृद्धि हुई। इस बीच बैंक ऑफ जापान की 2 दिन की नीतिगत बैठक आज शुरू हो गई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो यूरो जोन की अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरी तिमाही में 0.4% की और यूरोपीय संघ में 0.5% की वृद्धि संबंधी आंकड़े आए हैं। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी खरीदारी चल रही थी। फ्रांस का कैक 40 1% ऊपर चल रहा था। लंदन के फुटसी 100 में 0.4% की वृद्धि थी, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.3%

0: markets. So it's still work in progress, but I guess we'll wait and see what how it goes.
1: Puneet ji, Europe se jo aankde aaye hain, Euro area ka alag aur Euro matlab keh lein ki European Sangh ka alag 0.4% aur 5% ki yani badhat kya darsha rahi ki aane wale din wahan apekshakrit ab sudharne wale hain.
0: Dekhiye, Europe ka ek bahut bada challenge raha hai ki wahan economic growth nahi aa pa rahi hai. Halanki America, agar European zone ki agar hum baat kare jo economy ka size hai wo kareeb kareeb America ke barabar hai, kareeb kareeb $40 trillion ka economies hai ye. America ki thodi si badi hai. उसके बावजूद अमेरिकन इकोनॉमी करीब 1.5 से 2% अभी भी एनुअलाइज ग्रोथ कर रही है, लेकिन यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो 0.4% 0.5% ग्रो कर पा रही है. उससे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट हो रही है, रेवेन्यूज भी नहीं हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वहाँ पॉलिटिकल भी उस उथल पुथल उस कारण से हो रही है. यूरोप के लिए भी चैलेंज रहेगा ये, एंड यूरोप हैज़ टू रियली री इन्वेंट इटसेल्फ. मुझे नहीं लगता कि यूरोप का आज इकोनॉमिक डोमिनेंस वर्ल्ड में उतना है, और लगातार वो घटता जा रहा है उनका, तो ये चैलेंज है.
1: हाँ, यानी यहाँ पर एक पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यूरोप एज ए जोन कह ले या यूरोपीय संघ भी कभी दुनिया के इंजन के रूप में

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है।

बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के बढ़ते निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अजय सहाय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ मनोज पाठक और आज इस कार्यक्रम में हम

0: भारत के बढ़ते निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अजय सहाय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं मनोज पाठक और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बीच भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत हम कैसे पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक संघर्षों के बाद भी भारत ने अपने आयात स्रोतों और निर्यात गंतव्यों में विविधता लाकर अपने बाहरी व्यापार को लचीला बनाए रखा है और 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान हमने रिकॉर्ड निर्यात किया जो 863.1 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम कैसे अपने निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं और वैश्विक स्तर पर जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार को निरंतर बढ़ाए रख सकते हैं। इस विषय पर हमने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है जाने माने विशेषज्ञ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल और CEO डॉक्टर अजय सहाय जी को। डॉक्टर सहाय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम यही समझना चाहेंगे कि हमारे सामने जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिसमें जगह जगह मार्ग रुक रहे हैं, एक ओर, दूसरी ओर ऊर्जा का जो संकट है उससे निकलने के समाधान ढूंढे जा रहे हैं, जगह जगह रूट्स बंद हो जा रहे हैं, उसमें हमारे लिए कैसी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं?
2: जैसा आपने बताया है कि जितनी चुनौतियां हैं उसके बाद भी अगर आप भारत के निर्यात को देखिए तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 863 बिलियन डॉलर का हमने पिछले वर्ष में निर्यात किया था और जबकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में आ गए, मिडिल ईस्ट की बहुत सी इकॉनमी इंपैक्ट हुई है, उसके बाद भी अगर हम फर्स्ट क्वार्टर 2000

का एक प्रोएक्टिव पॉलिसी का सपोर्ट दिया है, उससे भी जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा ज्यादा कॉम्पिटेटिव होते जा रहे हैं। और अगर हम पूरे एक्सपोर्ट्स को देखें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हमारे जिनको हम कह सकते हैं जो हमारे सनराइज सेक्टर्स हैं, जिसमें मैं कहना चाहूंगा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, ऑटोमोबाइल है। इन सेक्टर्स में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और शायद जो हमारे पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो हमें काफी मदद भी कर रही है। दूसरी चीज, बहुत सी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपना बेस कर रही हैं, जो फ्री ट्रेड

हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन फिर भी हम इस प्रतिस्पर्धा में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट का जो फोकस था वो पहले दिन कुछ सालों में हमेशा यूरोप और यूएस के ऊपर रहा है। यूएस अभी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मार्केट है। 18% अपने एक्सपोर्ट का यूएस को एक भेजते हैं, लेकिन ईयू और की जगह हमारे आसियान कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, अफ्रीका है, नॉर्थ ईस्ट एशिया है, ये हमारे लिए मार्केट बहुत बड़े होके आए हुए हैं और इन मार्केट में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। इसी चीज जो बहुत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं उसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आया है। जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, चाहे पीएलआई स्कीम की बात करें या और हम प्लग इन प्ले के लिए जो स्कीम्स इंडस्ट्रियल पार्क में आ रही वो भी इंडिया

0: जब रेड सी की क्राइसिस हुई तो ये हुआ कि जो भी हमारा सेरेमिक का जो भी उद्योग है वो बुरी तरह प्रभावित होगा। लेकिन जब हम लोगों ने खोजा का अध्ययन किया तो हम लोगों ने फाइंड की जो भी इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट की ओर चली गई थी। लेकिन जब रेड सी की प्रॉब्लम खत्म हुई वो फिर वापस एक्सपोर्ट में चले गए। तो शायद इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास इतना बढ़िया वाइब्रेंट डोमेस्टिक मार्केट है कि हम इस तरह प्ले कर सकते हैं। ये तरह का ऐसी जो सुविधा है वो बाकी कंट्री को नहीं है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के पास ऐसी सुविधा नहीं है।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, आपने कहा कि जो वैश्विक कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत को अपना बेस बना रही हैं और हमारे यहाँ से उत्पाद अन्य देशों को जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ क्षेत्र जहाँ भारत में इनका अच्छा आधार बन गया और निर्यात हमारा अब अच्छी तरह हो रहा

0: बनाना चाहती हैं पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करने के लिए।
1: यहाँ पर आपने चर्चा की सनराइज सेक्टर की और साथ ही पारंपरिक की, तो पारंपरिक क्षेत्र जिसमें कह लें कि कुटीर उद्योग यानी जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए भी अवसर बनता है, उसके अलावा जो मझोले हैं SMEs हैं उनके लिए अवसर बनता है, उनका क्या भविष्य नजर आ रहा और उनके सामने चुनौतियां क्या देख रहे हैं और उसका समाधान सरकार के स्तर पर क्या ढूंढा जा रहा?
0: देखिए, जहां तक आप हमारे कुटीर उद्योगों की बात कीजिए या जो हमारे ट्रेडिशनल उद्योगों की बात कीजिए, उनके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं उन एग्रीमेंट पे इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि हम बात करें, अगर हम यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बात करें और हम टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर को लेके रखें तो इनमें बहुत हाई ड्यूटी है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें वहां पे भी टेक्सटाइल और फुटवेयर में बहुत ज्यादा हाई ड्यूटी है। हम अभी भी उन मार्केट में हैं और अगर हमें टैरिफ का एडवांटेज मिलता है तो इन सेक्टर में हम अपना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जहां हम अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को देख रहे हैं या हमारे

0: वाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में

0: कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें।

आज की सांझरे की महफिल में हमने सुने कुछ ऐसे गीत जिनमें कहीं जीवन का उल्लास था, तो कहीं युवा मन की उमंग, कहीं

0: न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने इस संबंध में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
1: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू

0: कर ये सब पंजाब के छात्रों को न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहा है। पंजाब के छात्रों को न्याय तब मिलेगा जब पंजाब में जिस फार्मास्यूटिकल की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है वो दोबारा होनी चाहिए।
1: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी दोहरे मापदंड अपना रही है।
2: पंजाब में भी जब पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा पंजाब में, तो वहां पर आम आदमी पार्टी चुप्पी क्यों साधे हुई है? ये जो उन्होंने दोहरे मापदंड रखे हुए हैं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ये नहीं चलेंगे।
1: भाजपा का आरोप है कि पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। दिल्ली सरकार राजधानी में भूमि और संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 2026 लाने जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद पूरी दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वे कर उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक संपत्ति के लिए विशिष्ट प्रॉपर्टी आधार कार्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार आधार कार्ड ने प्रत्येक नागरिक की पहचान को एक विश्वसनीय स्वरूप प्रदान किया है, उसी प्रकार अब दिल्ली की प्रत्येक

0: रेठ ने आज कहा कि लगभग 17,000 लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वायुसेना और भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी SIDM द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्वदेशीकरण विषय पर आधारित संकल्प नामक एक कार्यशाला के बाद श्री सेठ ने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
1: 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए, तो लक्ष्य है हमारा एकेडमिया, हमारा साइंटिस्ट, और कहते हैं ना कि जितना ज्यादा पसीना हम अब कारखानों में बहाएंगे उतनी सीमा पर बैठे जवान है उसको मदद होगी। तो अब तो इनोवेशन का जमाना है, वो जुड़ रहा है, और भारत की जो डिफेंस सेक्टर बहुत ताकतवर हुई है।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार को दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 12 करोड़ रुपए से निर्मित इस उत्कृष्टता

दिल्ली 6 के बीच होगा। इस T20 टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 8 पुरुष टीमें और 4 महिला टीम खेलेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध

वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों की एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जनगणमन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा।

द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृहमंत्री सदन में आएं और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद

प्रश्नकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया।

अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहली परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी।

रोक लगाए, अन्यथा यही जेन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

0: पदक तालिका में 3 स्वर्ण 9 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन पर दिलीप महादू गावित ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
2: मैं बचपन में पेड़ से गिर गया था तब वो हाथ कट करना पड़ा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया पैरा वालों के लिए सपोर्ट करने के लिए। पैरालंपिक वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी स्पोर्ट भी बहुत सपोर्ट करे, हमारे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। उस सपोर्ट की वजह से आज हम देश का नाम ऊंचा कर पाए।
1: 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफिकेशन राउंड

0: कैटेगरी में भारत के लिए पहले ही पदक पक्का कर चुके हैं और अब इनसे उम्मीद होगी कि ये स्वर्ण पदक के लिए बेहतरीन प्रतिस्पर्धा करें। वहीं महिलाओं में अगर बात करें तो साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम, प्रिया घांगस 60 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम और लवलीना जो है 75 किलोग्राम में भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर चुके हैं। तो इस तरह 10 मेडल जो हैं भारत के वो पहले से ही सुनिश्चित हो चुके हैं मुक्केबाजी में और ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं स्वर्ण पदक की रेस में।
1: सारे खिलाड़ियों को हम शुभकामनाएं देते हुए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की ही बात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी प्रवीण चित्रावेल दूसरे और सिल्वा प्रभु ने तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चित्रावेल ने अपने पहले और एकमात्र प्रयास में 16.41 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। ठंडे और तेज हवाओं वाले मौसम के कारण 14 में से कोई भी एथलीट 16.60 मीटर के स्वतः क्वालिफिकेशन मान

0: अनमोल खरब हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और बात क्रिकेट की। भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना अंतिम टेस्ट मैच 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान खेला था। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उनके क्रिकेट करियर पर नजर डाल रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा।
2: Today, I feel the timing is right for me to move on and announce my retirement from international cricket and all formats.

श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात, खेल जगत की हर खबर के साथ। इसी के साथ अतहर सईद को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।

क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी

0: स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
2: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र

शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.

0: पाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है।

0: उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दूर संचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: राकेश भटनागर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: राकेश जी। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक तरह से मेरुदंड भी माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? क्या ये केवल मोबाइल और इंटरनेट का ही विस्तार है या इससे कहीं अधिक सूचना प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है?
2: जो एक सेगमेंट जिसमें कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ वो मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। पहले जो है मोबाइल फोन जो था मोस्टली इम्पोर्ट होते

और भी बढ़ने की क्षमता है। ग्वालियर सिटी में जो 70 एकड़ एरिया है उसमें जो है वहां पर शेड्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। जो लागत होगी वो कंपनीज को उसको प्रोक्योर करने की लागत भी बहुत नॉमिनल होगी। उनके पास वहां पर टेलीकॉम टेस्टिंग इको सिस्टम भी वहां पे लगाया जाएगा, टेलीकॉम सेंटर्स भी लगाए जाएंगे, और उसके साथ साथ में जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी काफी योगदान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन।

0: इंडिया का जो रोल है अभी तक जो कंपैरेटिवली पीछे रहा है वो काफी आगे बढ़ सकता है।
1: इस दिशा में अगर थोड़ी सी बात और हम करते हो तो 6G टेक्निक पर भी भारत काफी काम कर रहा है, और भारत का फोकस शुरुआत में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6G में हम वैश्विक नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए।
0: इंडिया में हमारे पास भारत 6G अलायंस है, इसमें जो है डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं जो R&D कर रहे हैं वो ज्यादातर प्लेयर्स उसके साथ जुड़े हैं, वो इंडस्ट्री के से भी हैं, एकेडमिया से भी हैं, और नए पेटेंट्स के लिए भी काम शुरू हो गया है। कुछ पेमेंट रेगुलर इसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं और कई कंट्रीज के साथ में MOU भी साइन हो चुका है। करीब 6-7 कंट्रीज के साथ में इसमें इंडिया ज्वाइंटली वर्क कर रहा है।
1: जी
0: UK इंडिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के साथ में वर्क चल रहा है, US के साथ भी वर्क चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी साझा वर्क चल रहा है, जापान के साथ भी वर्क चल रहा है, और इंडस्ट्री जो है रेगुलरली जो है इसमें काफी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रही है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडिया जो है 6G में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आए। पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी 4G तक की जो टेक्नोलॉजी थी इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं बन पाया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G में भी करीब हमारे पास 10-12 प्लेयर सक्षम हैं जो कि ग्लोबल 5 प्लेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
1: जी राकेश जी, अभी आपने वैश्विक नेतृत्व की बात कही, ग्लोबल लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं उसकी बात की, थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं, गांव की हम बात करते हैं। तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावना है, खासतौर पर 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव गांव तक पहुंचने की बात करते हैं?
0: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218,
1: जी
0: आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा। ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था।

0: में श्रेष्ठ साबित कर सकता है।
1: आपने क्लाउड की आपने मेंशन करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेंशन करी, तो हमने जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसमें ये ऑलरेडी बीच में यूज किया जा रहा है।
0: जी
1: और हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया था, यूके एंड यूरोपियन यूनियन की एक टीम भी आई थी, तीन विशेषज्ञ, तीन प्रोफेसर भी आए थे, और उसके साथ उन्होंने हमारे साथ एक एमओयू किया, और जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डेवलप प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इंडिया में एज फार एज द इंडस्ट्री

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई।

राहत शिविरों में। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने क्वालिफाई किया और ताइपे ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और किरण जॉर्ज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। विश्लेषकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या

0: 125 से अधिक होने का दावा किया है। एक रिपोर्ट।
1: जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलियां चलाने और अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने एक बयान में कहा कि नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और POJK में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। कब्जे वाले क्षेत्र में कराए जा रहे तथा कथित चुनावों के समय प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में

0: स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। कब्जे वाले क्षेत्र में कराए जा रहे तथा कथित चुनावों के समय प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने पर अड़े हुए हैं। भारत ने इन चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और संघर्ष विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। नए हमलों से अन्य देशों के भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि IRGC के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें सैन्य कमान केंद्र, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी केंद्र और रक्षा प्रतिष्ठान शामिल हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि केशन द्वीप पर हुए हमले में

है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लिस्टुक्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की

11 लोगों को बचाया गया। इनमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रांत में 406 राहत शिविरों में 9,400 से अधिक लोग ठहरे हुए हैं। भूकंप के कारण करीब 79,700 घरों में पानी की आपूर्ति बाधित है जबकि 19,000 घरों में अब भी बिजली नहीं है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पूर्वी कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कांगो सरकार के अनुसार लगभग एक सप्ताह में मरने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है जो दर्शाता है कि इबोला अधिक तेजी से फैल रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार तक इस प्रकोप में 3,442 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,521 लोगों की मौत हो चुकी है।

0: आल शर्मा।
1: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। नीरज पांचवें जबकि रोहित और यशवीर नौवें और दसवें स्थान पर रहे। वहीं प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। चित्रावेल ने दूसरा, सिल्वा प्रभु ने तीसरा स्थान हासिल किया। ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अनमोल खरब, तानिया हेमंत और राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। जबकि पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एचएस प्रणव हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला वर्ष 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अमानवीय कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुईं। जापान के कुमामोटो

प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

बात करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को

0: decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से हालचाल का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर तेजी रही, हालांकि मामूली बढ़त के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 274 अंक यानी 0.35% बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 24,317 पर बंद हुआ. हालांकि विस्तृत बाजारों में गिरावट देखने को मिली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% नीचे आकर बंद हुआ. स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.6% की गिरावट आई.
0: Benchmark domestic equity indices ended with modest gains.

0: Today, Sensex rose by 274 points, 0.35%, to close at 77,928, while Nifty added 67 points, or 0.3%, to settle at 24,317. However, in the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped over 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. Earlier, the markets opened on a subdued note as rising crude oil prices and escalating tensions in West Asia weighed on investor sentiment. After remaining range-bound for most of the session, both the benchmark indices edged higher during the final hour of trading.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो सेंसेक्स में सम्मिलित 30 में से 15 कंपनियां आज लाभ में रही हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली जो प्रमुख कंपनियां रही उनमें मारुति सबसे ऊपर है इसके शेयर 1.8% लाभ में रहे महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% से अधिक का मुनाफा हुआ रिलायंस के भाव 1.4% से अधिक ऊपर उठकर बंद हुए उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही अदानी पोर्ट्स जिसे 3.3% का नुकसान हुआ इंडिगो के शेयर 0.9% नीचे आ गए बजाज फिनसर्व में 0.8% की गिरावट हमने

0: Dipped 2.1%, housing finance dipped 1.3%, and mid small private banks quality tilt fell 0.8%. In contrast, auto rose by 1.6%, energy advanced over 0.7%, and consumer discretionary gained 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,630 companies declined, 1,601 companies advanced, and 176 companies remained unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर के तुलना में रुपया आज 3 पैसे कमजोर हुआ 95.68 रुपए के स्तर पर बंद हुआ पुनीत जी बाजार में आज कुल मिलाकर यदि हम देखें तो प्रमुख सूचकांक तो बढ़त में रहे हैं लेकिन विस्तृत बाजारों में निफ्टी पैक का 100 और यानी स्मॉल पैक और मिड कैप दोनों में हमने कमजोरी देखी क्या दर्शा रहा है ये बाजार
2: मनोज जी देखिए बाजार जो है बहुत एक मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग मोड पर अभी खड़ा है कई प्रकार के फोर्सेस इस वक्त शेयर मार्केट के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं एक तरफ हम देखते हैं कि जो कंपनी जगत के नतीजे आए हैं कंपनियों के नतीजे आए हैं वो कुछ उम्मीद से बेहतर हैं कुछ क्षेत्र में हम देख रहे हैं थोड़ा गिरावट है लेकिन करीब करीब वो अच्छे प्रदर्शन है नंबर्स बहुत अच्छे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के हम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो वहां हम बड़ी

क्योंकि आईटी क्षेत्र की कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वहां पर हमने बहुत भारी गिरावट देखी थी पिछले दिनों, कुछ अब हमने पिछले यदि एक या दो सप्ताह को देखें वहां बाइंग हुई है और 15-20% उछाल भी आया है बड़ी आईटी कंपनीज के शेयर्स में। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भारतीय बाजारों से काफी बड़े पैमाने पर उन्होंने पैसा निकाला था, हम वहां पर थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। वहां पर FIIs के द्वारा बाइंग दोबारा से शुरू हुई है, अभी लार्ज कैप्स में कर रहे हैं, लार्जली आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है थोड़ी बाइंग। तो मुझे लगता है कि ये सब फैक्टर्स हमारे सामने हैं और कुल मिलाकर जो असर आ रहा है सामने वो अच्छा आ रहा है। लार्ज कैप्स में बाइंग हो रही है, मिड कैप्स में जैसे आपने पहले कहा कि थोड़ा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि काफी ज्यादा शेयर्स बढ़े हुए हैं, तो काफी एक मिला जुला रुख है अभी बाजारों का।

0: Reliance Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The firm's consolidated net profit increased by around 27% to 5,986 crore rupees on an annual basis. Bajaj Finance's net interest income increased by 23% year on year to 12,571 crore rupees.
1: आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां पर आज कुल मिलाकर गिरावट देखने को मिली. हालांकि कुछ बाजारों में निवेशक ने खरीदारी भी की. दक्षिण कोरिया का कोस्पी बिकवाली के दबाव में 1.2% से अधिक नीचे आ गया. सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% घाटे में रहा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई. ताइवान का ताई एक्स 0.2% से अधिक नीचे आकर बंद हुआ. इसके विपरीत जापान में खरीदारी तेज रही और निक्केई 225 सूचकांक 0.7% लाभ में रहा. हांगकांग के हेंगसेंग सूचकांक में

0: Prices fall. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं। वक्त हो गया है 11:41 और 10 सेकेंड। तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे गीत के साथ। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत होगा। फिल्म का नाम है वो 7 दिन। स्वागत है आप सभी का।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि

11:55 और 14 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आशा जी की आवाज में। शहरयार के लिखे बोल हैं, खयाम का संगीत है, फिल्म का नाम है उमराव जान। इसी गीत के साथ गीत मेरे मनमीत से अर्पणा को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार।

विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में

है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जी हाँ, मोहब्बत, मोहब्बत की सबसे प्यारी बात यही होती है कि इसमें हर जवाब सीधा नहीं होता। कभी मुस्कान पहेली बन जाती है तो कभी निगाहें सवाल पूछती हैं और कभी खामोशी ही सबसे खूबसूरत जवाब बन जाता है। चांदनी रात में जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं या फिर एक दूसरे को याद करते हैं तो ये एहसास ही मोहब्बत की पहचान हो जाता है। प्यार की ऐसी ही मीठी शरारत, नोक झोंक और मुस्कुराहट जिंदगी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सबब बन जाती है। तो ऐसे में बात गीतों की ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम और आप सुनते हैं।

तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गैर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो ऐसा

संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है।

आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। मेघालय सरकार ने बर्नीहाट में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक वायु शुद्धिकरण उपकरण लगाने का फैसला किया है। इस बारे में राज्य के मंत्री और जिरांग के विधायक सुस्थेनीज सोहतुन ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष

तू भी पास हो तो दिल बेकरार अपना है, तू भी पास हो तो दिल बेकरार अपना है, कि हमको तेरा नहीं इंतजार अपना है। मिले कोई भी तेरा जिक्र छेड़ देते हैं, कि जैसे सारा जहां राजदार अपना है। तू पास भी हो तो दिल बेकरार अपना है, कि हमको तेरा नहीं इंतजार अपना है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा।

रात सुरमई प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और चलिए रात सुरमई का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

उसकी याद, उसकी खुशबू और उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा उम्र भर यूं ही याद रहता है, यादों में चमकता रहता है।

जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था। जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था। आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था। अब के कुछ दिल नहीं न माना कि पलट कर आते, और सब देख रहे थे कि निशाना तू था। जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था। आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा

ये मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में 388 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता है। लवप्रीत मात्र 1 किलोग्राम के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। उन्होंने स्नैच में 176 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का वजन

सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, निभाए गए वादों से पहचाना जाता है। जब भरोसा साथ हो तो हर रिश्ता उम्र भर महकता।

जब मुलाकातों का मौसम आता है तो हर धड़कन एक नई गजल गुनगुनाने लगती है। प्यार की सबसे सुंदर यादें अक्सर इन्हीं हसीन लम्हों में जन्म लेती हैं।

0: विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म हमदम से महेंद्र कपूर और सुरेश वाडकर की आवाज में, संगीतकार घनश्याम, गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म अनाड़ी से, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में, संगीतकार आनंद मिलन, गीतकार समीर। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए

पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूट स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिस तरह मंद-मंद हवा झूले की गति देती है, उसी तरह सकारात्मक सोच हमारे जीवन को नई दिशा देती है। हर नई सुबह विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश लेकर आती है।